सब भोग निश्चय कर्म कहुना निश्चय त्यवे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावण छट दुनिया अंदर जावना मुदा चंगा आपना आप ही किता पावना हो

माने उंदा नाव सुजान पौड़ साहिब हो दयाल कृपा करी आसाई कार कराए सी सुसिप सेवा करी जिसनो हुक्म मनाए सी।

अवे चेतावन का सबका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ कल सजी साहिब कहाँ कर से आर आय तो देख देख भते मृत की पैज पंथ की श्री साहिब जी साई खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखानो सिखी।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक सीपी सच

तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है तुझ जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर ते आवहे तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पाए, जिना हर ते आया जी। तिन टूटी जमकी फांसी, जिन हर निर्भउ ते आया जी। तिनका भउ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी। परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुझ जी। हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करहें हर पूजा जी। तब तापहें जबहें बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बह सिमर शास्त्र जी। कर किरिया खटकर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे बड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई, तुद आपे पावे सोई वरत जी। तू आपे करहें सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरे सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साईं।

रहो, सब तेरी तू सवनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमगलादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया सब तुझ ही माही, तुझ में दूजा कोई नाही, जी जन सब तेरा खेल, बिजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आँख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख है जाने है सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़े भाई रे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तहें डूबियले, मन एक न चेतस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की शरना, जैन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भाई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मेल साध संगत भाजे केवल नाम, श्रंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साज ना जन आहर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन आहर राया, कहो नानक

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काब हो, आप हाथ दे मुहे बचाब हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब मेहरिन को आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये, आवाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे राखण हारे, साहेब संसहाए प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सलोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव देन जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, शत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, घट घट के पढ़ पढ़ की जाने, जाब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा, जब आ कर्क कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब हीते रहत नर आलम, जानत बेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़े उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा, ताको कृपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत, महादेव को कह सदा शिव, रंकार का चीनत नह भिव, आप अपनी बुद है जेती, बरनद भिन्न भिन्न तो है तेती,
तुम्रा लखा ना जय पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूपस रूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज किन्नी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकेठा सगरी सृष्ट दखाए अचंप आजुगा स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बार असिख संघरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणघाता जे आस तुझे तब शरणी बरे तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को इक बार ते है ताकि काल निकट न है रच्छा हुए नाही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जहे न हरयो ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें सुबारा काल फांसते ताहे ओबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओवारी सरव ठो मोहो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सरव ठो मोहो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मन्यो सिमरद शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुम भी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार बहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार बहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता वाया सह सेती मनवजियां वादाइया
राग रतन परवार प्रिया शब्द गावण आइया शबतो तंगावो हरि केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सवना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किसे है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसया जिनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वड्याइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागी कहे नानक तैस कहोआ तित कर अन्ना हद बाजी आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते बोनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्न हद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनावंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नाद तुरे मंदामणि महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पहयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रखो और तारो तम संसार
चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसरो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई। तरस पया बेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ। नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरे आ। तरस पया मेहरा मत होई

अबनासी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: का नाम। श्लोक भी महले पहले के लिखे तुंडे यसराज के तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुर अपने देहारी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार महला दूजा।
1: जे सचंद वैस

राख ले समझ जग जितो गुरुद्वार खेले समत सार रथ उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार जाकी दृष्ट अमृतता।

सदा अकल लिवर है, करण स्यो इच्छा चार है, द्रुम सपूर ज्यो निवे, खवे कस बिमल विचार है, इह तत् जान्यो सर्वगत अलख बिडाणी, सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी।

जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा, अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे शोक हो, गुर अमरदास कारण करण जीव तू।

0: तपस्ये मुखों ए पंडित मिठे बरस एक हो फिरियो किने न परचो लायो कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुरुदई मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो गुरुदई मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो
1: संतत ही सत

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत इक तिल नहीं पासी जाको हो है कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी धन धन ते धन जन जह कृपाल हर हर पै

0: रसगुधार।
1: श्लोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपा, गहने पौन पानी वे संतर चंद सुरजवता। सगली धरती मालतन बर्तन सरजा, नानक मूसे ज्ञान भी होनी खाए गया जमकाल महला पहला।
0: वन चिलन चन गुर पैर हलाइन फेरन सिर उड़ाव झट पाए खेलो खस कर जा। रोटियां कर पूरे ताल आप छड़ धरती ना।

0: रात पड़िए जेते बरस बरस पड़ी जेते माँ पड़िए जेते यार जा पड़ी जेते सास नानक लेखे एक गल और होमे चकना चाख महला पहला
1: लिख लिख पड़िया लिख लिख पड़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ भमया ते तो लव्या